0: जल रहे जल बिन कुंभ ना हो। ज्ञान का बधावन रहे गुरु बिन ज्ञान हो। ओ गुरु बिन ज्ञान हो।
1: बाबा जी थोड़ी इस छबील दे आसरे साडा पेंडा कटिया जांदा
2: आसरा उसका आधार दा मैं देख सेवादार हाँ।
1: खुश रहो बाबा जी खुश रहो।
2: आप उतर ले पी। ओ ले पी।
3: जल पाया परमेश्वर पाया
2: अब मोहे जलत राम जल पाया। राम अधिक तन जलत बुझाया मन मारण कारण बन जाइए सो जल बिन भगवंत न पाइए।
4: सो जल बिन भगवंत न पाइए।
2: हाँ बेटी।
4: बाबा जी असि भी मन में जल लग रहे हैं थोड़े को हजारे यात्री आते जाते शायद तुम्हें कुछ पता हुए।
2: कादा पता
4: ए मेरे पति ने इन्होंने सुपने विच एक थां वेखी सी पानी की एक छपड़ी और कंधे ते बेरी का दरख्त ते बेरी ते कां बैठते ने
2: छपड़िया ते कई ने ते बेरी दे दरख्त भी बेअंत हैं।
4: नहीं बाबा जी आज बेरी ते इक्को ही होएगी जिस तो कां उड़ के छपड़ी च डुबकी लैंदे ने ते चिट्टे हो उड़ जांदे ने।
2: चिट्टे हो उड़ते जांदे ने।
3: हां बाबा जी ते नाल ही आवाज आ रही सी
4: कागू हंस करे।
2: कागू हंस करे। कागू हंस कर ये तो गुरु नानक देव जी की बाणी है। तुसी इंज करो सिर्फ गोंदवाल चले जाओ उठे गुरु अमरदास जी का दरबार है गुरु नानक की अलाई बाणी का सोमा।
4: गुरु अमरदास।
2: हाँ बेटी उन्होंने हर चीज का ज्ञान है उन्होंने दर्शन करदे ही तुहाडे पैर अपने आप तुहानू उस मंजिल वल लै जाणगे जिस मंजिल ही तुहाडे दिल च तांगे।
4: किन्नी दूर है गोइंदवाल।
2: एथों थोड़ी दूर दरिया का पत्तर है उथे बेड़ी पैंदी है बस दरिया पार दे गोइंदवाल।
4: अच्छा बाबा जी असी चलने हैं।
2: परमेश्वर भली करेगा। कबीर सेवा को दोहे भले एक संत एक राम राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम।

मैं बंदा बेखरीद सच्चा है मेरा, मैं बंदा बेखरीद सच्चा है मेरा, जो पिंड सतसा सब कुछ है तेरा, माने ने माने तू तने तेरा परवासा, बिन साचे अंते को है तो जानू काचा।

तो तुम ते लेना, तू मेरा गहना, जो तू दे सोई सुख सेना। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता।

जियो तुमरी कृपा ते तुझ पछाणा तुमरी ओट तू है मेरा माणा तू बिन दूजा और न कोई तेरा खेल अखाड़ा जियो

क्या कहिए किस आस सुनाइए, जो कहना सो प्रभु जी पास, सब किता तेरा वरते, सदा सदा तेरी आस, जिदे वड्याई ता तेरी वड्याई।

कोई भरोसा नहीं इस शरीर दा। नाम दा तुलहा तैयार कर जिदे तो तू चढ़ के पवजल पार कर जावे। साहब कहंदे ने समा किसे दी इंतजार नहीं करदा।

सतगुरु कहिंदे ने देह सदा नहीं रहनी। जिंदगी विच कोई ऐसा कम कर जा के लोग तैनू याद करन, भाई वाह फलाना ता एदां दा सी, बड़ा चंगा सी।

ज्ञाने की बढ़नी मनो हाथ ले। शत्रुघ्न ज्ञान दा झाड़ू मन दे हाथ विच पकड़ ले ते अपने अंदरों ईरखा द्वैत चुगली निंदा बखीली ए सारी हूंज के बाहर कढ़ दे ताके तेरे हिरदे च टिक जावे सतनाम श्री वाहेगुरु।

बुद्ध सभी कुछ जो उजियारे ज्ञान की बढ़ने मनो हाथ ले ज्ञान की बढ़ने।

रोज अरदास करदा सी, ऐ परमात्मा आओ मेरे हिरदे दे थड़े ते बैठो। बेनतियां करदा रहा। एक दिन परमात्मा ने बेनती सुन ली, आ गए, कहन लगे खोल भाई बुआ तेरे हिरदे दे थड़े ते बैठी है। जां बुआ खोलिया, इस हिरदे दे सिंघासन ते बहुत भीड़ कठी हुई हुई, किधरे ईरखा बैठी है, किधरे क्रोध बैठे, किधरे होमे, किधरे लोभ, सारा थड़ा भरिया होया। परमात्मा ने पूछा बिठाएगा किथे, थड़ा तो तेरा खाली नहीं, एक वस्तु नू कढ़ेगा तां दूजी नू पाएगा, मैनू बिठाण लई किथे है थां। थड़ा ते सारा भर के रखिया होया। कह लगा लै इह तां गल भुली गई सी। आया क्रोध दी बां फड़ी बाहर छड़ आया, फिर आके काम नू बाहों फड़िया, गलो फड़ के बाहर छड़ आया। जा मुड़ वेख दे क्रोध उथे ही बैठे, मोह दी बां फड़ दे बाहर छड़ आउंदे, फिर अहंकार नू बाहर छड़न आउंदे, फिर वेख दे मोह उथे ही खड़े। ए विचारा बार अंदर सारिया नू कढ़दा रहा, एक एक नू कह लगा निकलो मैं परमात्मा आ गया उनू बिठाने। ओ कह लगे ओ परमात्मा ते तेरा अज आया है, असी तेरे कई जन्मा जन्मा दे साथी, इनू नहीं छड़ सकते। परमात्मा ने आख्या चंगा तू इन्हां नू बाहर कढ़, फिर समा होवेगा आवांगे, आके बैठांगे, तेरा थड़ा खाली नहीं। हुण जदों थड़ा खाली होया फिर आवांगे। इंतजार करके परमात्मा वापस चला गया। हजूर कहंदे ने हुण समा है, तौबा कर इन्हां गुनाहां तों, अते वाहगुरु दे अगे कर अरदास।

समय दे लोकां ने तां भावें उस नूं शूद्र कहा पर उस रविदास चमार ने राम दा सिमरन करके वाहिगुरु दी भगती करके ओ पदवी पा लई गुरु पंचम पातशाह कहिंदे हन।

अजय सरों में पीखे खाए ऐसी दरगे मिले सजाए रोवे रामन काला पया सीता लखमन विछड़ गया रोवे दसर लंक गवाए जिन सीता आंधी डारू आए रोवे पांडव पै मंजूर जिनके स्वामी रहते हजूर रोवे जन्मे जाख गया एक ही कारण पापी पया रोवे शेख मसा एक पीर अंतकाल मत लाग।

अक्षर दे नाम दा कदे निवास नहीं हो सकदा। नाम टिकेगा जिथे निम्रता है, जिथे आपा परमेश्वर प्रेण हो गया है, फिर नाम टिकेगा। जिथे अहंकार है, हौमे नामे नाल विरोध है, दोए ना बसे एक ठाए। इसलिए जब हम होते

कबीर मानस जंदरला बहे होतना बारंबार जो बंथल पाके पोंगिरे बोरना लागेगा।

तब एक मानस देही पाई, मानस जन्म अमूल पायो, वृथा काहे गवाओ, गुर सेवा ते भगत कमाई, तब एक मानस देही पाई, इस देह को सिवरे देव देगी पज भर की से पजो गोविंद भूल मत जाओ, पजो गोविंद भूल मत जाओ, मन चमका ही लाओ।

जब लग बिकल पाई नहीं बारी पज लै रे मन सारे पानी अब ना पजस पजस कब पाई आवे अंत ना पजया जाए ए तेरे अवसर ए तेरी बार

या भीतर जो राम बस्त है साचो ताए पछानो पई प्राप्त मान देहरिया गोविंद मिलन की ए तरी बरिया।

गोविंद भजन बिंद थे सब काम जो किरपन के नरार्थ दाम। गोविंद भजन बिंद थे सब काम जो किरपन के नरार्थ दाम। फिरत बोते जुगहारे हो फिरत बोते जुगहारे हो।

दुर्योधन की सभा के विचकार अपनी लज्जा बचाने वास्ते प्रभु नु याद कीता, एक मन एक चित होके ध्याया उसने। ता फिर जो परमेश्वर का नाम जपते हैं उन्हां दी लज्जा वाहेगुरु आप रखदा। सात संगत बोलो श्री। तीसरे प्रमाण विच भाई साहब कहते हैं, ओ गरीब ब्राह्मण सुदामा जो मित्र सी भगवान श्री कृष्ण जी का, जदों थोड़े जिहे चावल लैके द्वारकापुरी पहुंचिया तो उसके बदले भगवान श्री कृष्ण जी ने उस भेटा दे और सुदामे दे प्यार दे सदके उसनू दुनिया का बेअंत धन बख्श दिता। सुदामे नू नौ नीतियां अठारह सिद्धियां दे दी। चौथे प्रमाण विच भाई

अभेदता प्राप्त करन। उस वेले गुरु नानक नू करता प्रतवाही ने एक खजाना बख्शिश कीता, ऐसा अमूल खजाना ज्यो ज्यो इस नू खाओ खर्चो ए वधदा जांदा है। गुरबाणी दा खजाना, नाम दा खजाना, और फिर इस खजाने दे विच कदे

गुरु अर्जुन देव पातशाह दी उपमा कर दिया हूं। पट जिसका नाम मथुरा है, आप कहिंदा है जपियो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आए। जो भी प्यार नाल मन करके गुरु अर्जुन देव पातशाह दा नाम जपेगा, जो एक वरा मन करके प्यार नाल आखेगा धन गुरु अर्जुन देव, सारे प्यार नाल जपो धन गुरु अर्जुन देव। जपियो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आए, ओ फिर कदे भी गर्भ जूनिया विच नहीं पवेगा, 84 लाख त्रिगट जूनिया तो मुक्त हो जाएगा। जब लो नहीं भाग लिलार उदे, तब लो परम ते फिरते बोलता है। मथुरा कहिंदा है पट के जब तक साडे भाग नहीं समझागे असी संसार विच विचर रहे सन, लेकिन कल युग दे विच आके सानू जदों गुरु अर्जुन देव पातशाह दे दर्शन होए ते सचमुच फिर उस हरी विच और गुरु अर्जुन विच कोई फर्क नहीं है, क्योंकि गुरु अर्जुन देव पातशाह गुरु नानक दे पंजवें स्वरूप, पंजवें गुरु नानक धन गुरु अर्जुन देव महाराज। और जिस गुरु नानक दी उस्तत गावे जनकाद जुगाद जुगेसर हर रस पूरन सर्व कला, गावे सनकाद साध सिदादक मुन जन गावे अचल छला, गावे गुण तोम अटल मंडलोए, भगत पाए रस जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानी। उस गुरु नानक दे गुण जो राजे जिनक दा दरबार लग्या सी और उस दरबार विच वड्डे वड्डे रिखी महापुरख तपस्वी जोगी आके राजे जिनक दे चरणा दी धूड़ लै रहे सन, क्योंकि भाई गुरदास जी कहिंदे ने भगत वड्डा राजा जिनक है गुरमुख माया विच उदासी। राजा जनक जिसने बड़ी तपस्या की और भगत वड्डा क्यों गिनिया गया है, क्योंकि राजे जनक ने राज विच रह के अपने आप नू माया तो निर्लेप रखी है। सात संगत बोलो श्री, ते भाई गुरदास जी कहिंदे इस वास्ते राजा जनक वड्डा है। ते एक वरां दा जिक्र राजा जनक देव लोक नूं गया, देवते भी लोचदे हन कि कोई जपन वाला साडी पुरियां विच चरण पावे। जिस वेले राजे जनक नूं देव लै के देवते लै के अपनी पुरियां विच जा रहे सन, ते रस्ते विच बड़े रोण दी कुरलाउण दी आवाज आई। राजे जनक ने पुछया कौन रो रहे हन, देवतियां ने दस्या महाराज ए नरक हैं जिथे पए हुए जीव अपने कर्मा दे अनुसार भोग भोग दे, क्योंकि इन्हां जीआं ने जाके संसार ते नाम नहीं जपिया, भगती नहीं कीती, इस वास्ते भगती ना करन करके इन्हां ने अपना मनुखा जन्म जेड़ा हीरे लालां तों भी महंगा सी, जेड़ा स्वास हीरे लालां तो भी महंगे सन, इन्होंने मिट्टी विच रोल देते। ताई आखिया बंदगी ना कीती आ हीरा जन्म पाके, जे तेनू मनुखा जन्म वाहिगुरु ने दिता है और तू बंदगी नहीं कीती ता तू अपने मनुखा जन्म नू कौडियां दे बदले वेच छड़िया, उस स्वासा नू कौडियां दे बदले वेच छड़िया। ताई आखिया

नजदीक चला गया जिवें दो मित्र एक दूजे नाल गल्लां करते ने कि दुश्मन नूं भी ना हथी जाए। मालिक कोल बैठ के कह रहा रब तू भी किठा सी और बड़ा खतरनाक ठग, शायद दुनियावी ठगां दी जाल विचों कोई निकल जाए पर तेरा ऐसा जाल है कोई नहीं निकल सकता। वेख न एक तरफ बाप है एक तरफ पुत्र है, पुत्र जवान होंदे दोआं विच तेरी जोत है, वेख दिया पुत्र तुर जांदा है ते बाप ताई मार के रो पे कहिंदा मेरे जीवन दा की पत, ओ रो रहे ते तू तमाशा वेख कैसी तेरी ठगी है। स्त्री नू पति लई पति नू स्त्री लई शिकवे हन। कबीर जी कहते हैं

बिन घोर अंधार गुरु बिन समझ न आवै गुर बिन सुरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पावे।

सिंह सच्चे पातशाह तू सब दी मदद करन वाला है। जिस दी मदद कोई नहीं करदा उस दी मदद धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चा पातशाह करदा। और आप दी मदद अकाल पुरख वाहेगुरु आप करदा है। सात जगत बोलो श्री ना सुनो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह एज दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह हक रा गंजूर गुरु गोबिंद सिंह जुमला फैजे नूर गुरु गोबिंद सिंह आख्या धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह तू अकाल पुरख वाहेगुरु दा खजांची है। जो अकाल पुरख वाहेगुरु दे खजाने विच बख्शीशा हन तू उन्हां नू वंडन वाला है। सात सगत बोलो श्री हक हक आगाह गुरु गोबिंद सिंह शाह शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह भाई साहब भाई नंद लाल जी कहते हैं कि धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह तू अकाल पुरख वाहेगुरु नू जानिया है इस वास्ते संसार विच तू महाराजिया का महाराज है। तेरे वर्गा संसार विच कोई होर महाराज कोई राजा है ही नहीं। इस वास्ते मैं सारे संसार नू छड़ के तेरे चरणों विच आया हां

मेरी चोली किसे ने नहीं भरी। इस वास्ते मैं तेरे दरबार विच आया और सुने जो तेरे दर ते आउंदा है उदी चोली कदी खाली रह नहीं जांदी, ओ सदा तेरे दरबार तो चोलियां भर की जांदा है। सत सगत बोलो श्री। इस वास्ते हक हक आगाह गुरु गोबिंद सिंह शाहे शहनशाह।

देख रहा पता गुरु गोबिंद सिंह, जानू दिल रहा गुरु गोबिंद सिंह। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह, तेरी वर्गी कोई तेज नहीं चला सकता संसार विच, और तू सारिया दा दिलों का हाल जानता है।